मनुख जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखदे हन और रोजाना दा नेम भी करदे हन, सवेरे उठ के परमात्मा दी भगती करदे हन, उसकी पूजा करदे हन। साहिब फरमान करदे हन कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जाए। जैसा कि गुरु

रखियो ग्रे पीत उठ उहाँ को दौड़ो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

कीर्तन हर हर गाई, हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज।

रंग चाड़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने आ भई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया, पर खुल

हिंदुस्तान का महान तीर्थ मनिया गया। गंगा के किनारे ते बह के ऋषियां मुनियां तपियां ने तप किया, अपने जीवन नू सुचज्जा बनाया। गंगा हिंदुस्तान का महान तीर्थ है। हिंदू लोग गंगा का पानी बड़ा पवित्र समझ के अपने घर रखते। गंगा मैया भी किया जाता है। तो गंगा दे लागे एक सलता नदी है, वो अगे जाके गंगा विच मिक्स हो गई। तो कबीर जी ने उदाहरण दिती, कहिंदे ने मैं कल्ला थोड़ा विगड़िया, गंगा दे नाल लग के सलता भी विगड़ गई। ऐसी विगड़ी गंगा ही बन गई।

चरण छाया है उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ए पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू ता मैनू एनिया बख्शिशा कीतियां हैं एनिया रहमता कीतियां हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहते अगह कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

पर आएगा हौली हौली आएगा सिरजनहार दीआं गल्लां विचों आएगा जिन्ना चिर बेकार दीआं गल्लां विच सिर ते भार पैण वालीआं गल्लां विच लगे रहांगे उन्ना चिर इस रस्ता आपां जरा जिन्ना अंश मात्र भी चख नहीं सकदे। साहब कहिंदे ने मैं अपने दिमाग ते गल्लां दा बोझ पा रहे उल्टी बेसवादी खड़ी कर ली मैं गुण गल्लां कह सिर भार गली गल्लां सिरजनहार जे गल्लां दा ही रस लैणा ते सिरजनहार दीआं गल्लां च बड़ा रस खाना पीना हसना बात जिहड़े निक्के निक्के स्वाद बने होए ना ए सारे बेकार ने जब लग हृदय ना आवे याद जे वाहिगुरू चेते च नहीं ना ए स्वाद बेस्वादी च बदल जांदे। हां तो परवाह कही क्या कीजे जन्म जन्म किछ लीजी लीजे जिन्हां ने इस जन्म दा मकसद पूरा कीता है भाव सिमरन कीता है उन्हां नूं किसे दी कोई परवाह नहीं कोई लेखा पुछण वाला नहीं। हां जिहड़े टुटे होए ने बेकार दीआं गल्लां च बेकार दे रसां च पए ने मन की मत मन दी मत पिछे लगे मता गल मता मते हाथी वांगू झूमदे तुरे जांदे ने पता ही नहीं की कर रहे जो किछ बोली है सब खतो खता जो गल करदे ने गुनाह बन जांदी फिर क्या मुंह लै कीचे अरदास पाप पुन दोए साखी पास जिंदगी च पुन्ना दी अणहोन ते पापा दी होन ए अरदास करन जोगा मुंह भी तां नहीं रहण दिंदी की मुंह लै के अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे बख्शे जाण दी अरदास करन जोगे भी तां कोई ना रहेगा क्या मुंह लै कीचे अरदास पाप पुन दोए साखी पास ते वसी भी दसी है जैसा तू करे तैसा को होए तुद पिंड दूजा ना ही कोए जे ही तू मत दे ते ही को पावे तुद आपे भावे तिले चलावे पर नाली प्रेरणा

कोई एक काज सवार सकता है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है, जो मेरे

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती है, नीचे होते चले गए।

कोई गावे कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृत की बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने आख्या भाई कोई सुने कोई गावे कोई उपदेश करे किसी भी जाति का होवे कोई नीच कोई ऊंच नहीं बल्कि सारे का सत्कार

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां ने। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाई, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करदा है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लैणा नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिब अंत कहते ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, यह किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नार की गल करता, कोई उसनू इलाही नाद की गल कह के करता, कोई किसी ढंग नाल दसता है, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह भी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चियां वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चियां दे अंदर इह शौक पैदा करता जांदा है। बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़ियां तरक्कियां करेगा, उह चा लै के तुरदा। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिया बहुते तां रोंदे वी वेखेगा, उहनूं इक वारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, इक तां जकड़ के बहिणा बड़ा औखा, एक जो कुछ पढ़ाते ने उसकी समझ तो बाहर आता है, वह पहला पहला बड़े परेशान होता है, पहला पहला उसनू उड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर है बोझ जापते हैं। लेकिन चार दिन बाद वो जो बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते, उन्होंने अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे वही मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धर की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापदा है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती है। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है भी स्कूल च जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, वरिया बद्दी 15-15-20 वरे बोझ ही धोंदे ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे हुए दुखी होंदे हुए, कई वारी वह फेल हो जाते, ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उन्हां दे माता पिता उन्हां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा है, विगार कटदा है, तू कसीट के तुरिया आउंदा, वैसे पढ़न वाली गल कोई बिल्कुल इसे तरह साडी गल।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ,

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।